मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान। आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस शो में जिसका नाम है All is well, आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो, ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। तो मेरे सुकून की मुसाफिर हो, आज है फ्राइडे और फ्राइडे का मतलब है काम की गाड़ी स्लो मोशन में और दिल का म्यूजिक एकदम हाई मोशन में। पूरे हफ्ते की भागदौड़ के बाद आज का दिन थोड़ा मुस्कान लेकर आता है। डेडलाइन साइड में हो जाती है और मी टाइम हाई हो जाता है, क्योंकि ना शनिवार की जल्दी ना सोमवार का डर, बस एक सुकून का एहसास जिसे फ्राइडे कहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि यार शुक्रवार वो खुशबू होती है जो कि पूरे हफ्ते भर की थकान की महक ले आती है। आज थोड़ा सा काम के बीच में चाय की चुस्की जरूर लेना और उन दोस्तों से बात जरूर करना जिनसे बात आप बस मीटिंग के वक्त करते हो। और हाँ, अपनी प्लेलिस्ट में आज वो एक गाना जरूर ऐड करना जिससे आपको सुकून मिलता हो। तो चलिए फिर इस सुकून वाले फ्राइडे को एंजॉय करते हैं और आपकी मॉर्निंग गुड करते हैं। आज का दिन जैसा भी हो गुजरने वाला है, याद रखिएगा और कीप मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि मुस्कान की चमकान जब तक आपके चेहरे पर रहेगी तब तक आपका बॉस आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, समझे। सो बी सेफ, कीप मुस्कुराना एंड गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर। सुनते रहना MGM 90.8 FM।

किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, पर हम में से कितने लोग हैं जो ये सच मानते हैं। एक बार की बात है, एक बड़ा सा मॉल था, वहीं एक लड़का हर रोज आता था, पुराने कपड़े, उलझे बाल, चप्पल पहने। लोग उसे देखते ही नजरें फेर लेते, सिक्योरिटी गार्ड भी उसे अंदर जाने से मना कर देता, भीख मांगने आया है शायद, ऐसा उसे लगता। एक दिन मॉल में एक इमरजेंसी हो गई, अचानक एक बच्चा एस्केलेटर पर फंस गया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तभी वो पुराने कपड़ों वाला लड़का दौड़ कर आया, एस्केलेटर का पावर बंद किया, बच्चे को निकालकर सुरक्षित उसके माँ बाप के हवाले कर दिया। सब हैरान थे। तभी एक आदमी बोला, अरे ये तो मशहूर मैकेनिकल इंजीनियर है, कभी अपनी कंपनी के लिए मॉल के एस्केलेटर डिजाइन करता था, अब एनजीओ चलाता है और जमीन से जुड़ा रहना बहुत पसंद है इसे। पूरा मॉल चुप हो गया। वो लड़का बिना कुछ बोले मुस्कुराता हुआ चला गया। तो अगली बार जब किसी को सिर्फ उसके कपड़ों, रंग या हुलिये से आंकना बंद कीजिएगा, जरा रुकिए, क्योंकि हो सकता है जिसे आप कुछ नहीं समझ रहे हो वही किसी दिन आपकी जिंदगी बचा ले। कवर से नहीं, कंटेंट से पहचानिएगा, क्योंकि हर कहानी बाहर से वैसी नहीं दिखती जैसी अंदर से होती है। इसलिए कहा जाता है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आई होप कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आप भी किसी को उसके पहनावे से जज नहीं करोगे। बताइएगा मुझे कैसी लगी कहानी, डीएम कीजिएगा इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर, और सुनते रहिएगा किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

मॉर्निंग दोस्तों, आरजी अदनान आपके साथ इन द शो. ऑल इज वेल आरजी अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन एमटीएम 90.8 एफएम. और इस वक्त ना हम एक गेम खेलते हैं जिसके अंदर मैं आपको एक गिफ्ट जीतने का मौका देता हूँ. उसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं आप भी आपको ना तो एक म्यूजिक सुनाऊंगा और आप मुझे बताना कि वो कौन से गाने की म्यूजिक है. थोड़ा इंटरेस्टिंग गेम है और ये गाने तो हम सभी ने सुने होते क्योंकि गाने बहुत रिलेट करते हैं. तो गौर से सुनिएगा म्यूजिक और बताइए इसका जवाब.

सो बताइए कौन से गाने की म्यूजिक है। बहुत ही बेहतरीन गाना है और लता मंगेशकर जी का गाना है। अब देखो सिंगर का नाम बता दिया मैंने, अब आप मुझे बताइएगा कि ये कौन सा गाना है और फिल्म कौन सी है। जवाब हमें व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। और सभी ने ये गाना तो सुना ही होगा ऐसा मुझे लगता है। इतना बेहतरीन और खूबसूरत गाना है कि सुनने के बाद बहुत फील होता है। सो जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, जो सबसे पहले जवाब देगा उससे ही गिफ्ट मिलने वाला है। फिर मत कहना कि यार हमने जवाब दिया था आपने गिफ्ट नहीं दिया। सो जो जल्दी जवाब देगा उसे गिफ्ट मिलेगा। सो जल्दी करें और सुनते रहें।

0: फरमाइश मैं पूरी करता हूँ, बस आप मुझे अपने गानों की फरमाइश बताते रहिएगा। आप सुन रहे हो All is well, और इस वक्त ना तो गाने की फरमाइश पूरी करने का वक्त है, और आज गाने की फरमाइश आई है निखिल शेदुर की तरफ से इस गाने के लिए।
1: छुप गए सारे नजारे, मात हो गई।
0: क्या बात यार, बहुत ही बेहतरीन गाने की फरमाइश की है निखिल जी ने। तो छुप गए सारे नजारे, वो क्या बात हो गई, तो ये गाना भी हम प्ले करते हैं निखिल जी की फरमाइश पर। दोस्तों अगर आपको भी अपने फरमाइश का गाना प्ले करना है तो हमें व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, क्योंकि यहाँ पर आपकी फरमाइशें दिलो जान से पूरी होती है। सो जल्दी कीजिएगा। बाकी तो अब निखिल जी की फरमाइश पर अगला गाना प्ले करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान इन द शो ऑल इज वेल।

आपके बच्चे जिस रिक्शा से स्कूल में जाते हैं वो रिक्शा सेफ है क्या? बड़ा सवाल है। यू आर लिसनिंग MTM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और बात कुछ ऐसी है कि एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखा है, वो अपने शहर का है, जहाँ पर एक रिक्शे वाला स्कूल के बच्चों को लेकर जा रहा था। तकरीबन उसके रिक्शे में 8 से 10 छोटे बच्चे थे और वो रिक्शा चलाने वाला फुल टाइट था, मतलब दारू पीकर वो रिक्शा चला रहा था। और एक दो लोगों ने उसको टोका, उसका वीडियो शूट किया और बाद में वो ऐसा बता रहा था कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, कर लो, मैं दारू पिया हुआ हूँ। और उसके रिक्शे में बच्चे बैठे थे, तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन है अपने शहर में। तो सवाल वही है कि जिस रिक्शे से आपके बच्चे स्कूल जाते हैं वो रिक्शा चलाने वाला दारू पीकर तो नहीं चला रहा है? और अभी इस रिक्शे वाले को पकड़ लिया गया है, इसके ऊपर जो कुछ कार्रवाई होगी वो तो होगी कानून के जरिए, लेकिन सवाल वही उठता है कि हम इतने भरोसे से किसी रिक्शे में अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो बच्चों की जान कितने खतरे में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने भी अब इस पर गौर करना चाहिए कि जिस रिक्शे में अगर आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो वो सेफ है या नहीं है, या किसी स्कूल का रिक्शा हो तो इसको स्कूल वालों ने भी जरा इस पर ध्यान देना चाहिए। एंड पुलिस प्रशासन ने भी एकदम एक्टिव मोड पर और कड़क कार्रवाई शुरू करनी चाहिए ऐसे रिक्शा चलाने वाले लोगों पर। बस रिक्शे की नहीं, बात जो भी ड्रिंक और ड्राइव करता है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब पुलिस प्रशासन कह रहा है कि अगर कोई भी रिक्शा वाला दारू पीकर अगर रिक्शा चलाएगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई तो होगी, फाइन वगैरह होगा। और पेरेंट्स को भी थोड़ा गौर देना चाहिए कि आपके बच्चे जिस रिक्शे में जा रहे हैं वो रिक्शा सेफ है या अनसेफ है, क्योंकि रिक्शे वाले तो सुधरने का नाम नहीं लेते। अब इतना तो पता है कि इस पर कार्रवाई होगी रिक्शे वाले पर, कुछ दिन में छूट भी जाएगा, उसके बाद सुधरेगा या नहीं? देखो नहीं सुधरेगा, क्योंकि पहली बार तो नहीं हुआ होगा उसके साथ, ये बहुत टाइम से ऐसा रिक्शा चला रहा होगा। तो जिम्मेदारी हमारी है, हमने भी देखना चाहिए कि अपने बच्चे सेफ है या नहीं। तो थोड़ा सावधान रहिए एंड स्टे ट्यून।

0: टेस्ट है यार इस चाइनीज की, क्या बढ़िया मंचूरियन बनाया है। ऐसा चाइनीज खाने के बाद अपने मुंह से निकलता ही था इसलिए कह रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। You are listening MGM 90.8 FM, RJ Adnan आपके साथ है। और कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि एक रिपोर्ट में भी आया है कि आजकल जो चाइनीज मार्केट में मिलता है तो उसका टेस्ट थोड़ा फीका होते हुए नजर आ रहा है। और इसके पीछे ना तो एक रीजन है, क्योंकि अब तक जो हम चाइनीज खाते थे उसमें एक ऐसी चीज होती थी जिससे उसका टेस्ट बढ़ता था और चाइनीज खाने के बाद अपने आप मुंह से निकलता था, वाह क्या टेस्ट है। बट वो टेस्ट की बात ही थी पाउडर की वजह से, जिसको कहते हैं अजीनोमोटो। अभी अजीनोमोटो क्या होता है, ये एक ऐसा पाउडर होता है जिससे खाने की टेस्ट बढ़ती है। अब कहीं ना कहीं ये पाउडर ना तो हम सभी ने खाया है, अपने घर पर भी हम यूज करते हैं, जिसको हम सभी लोग एक सिंपल नाम से पहचानते हैं, दैट्स कॉल्ड टेस्टिंग पाउडर। अगर आप मार्केट में जाओगे और पूछोगे कि अजीनोमोटो देना, नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उस नाम से उसको ज्यादा पहचान नहीं मिली है, बट टेस्टिंग पाउडर नाम से उसको पहचान मिली है। और जिस तरीके से FDA अभी कार्रवाई कर रही थी, तो हर होटल वालों ने, चाइनीज वालों ने अपने खाने में टेस्टिंग पाउडर मिलाना बंद कर दिया गया है, क्योंकि FDA के गाइडलाइंस के हिसाब से आप टेस्टिंग पाउडर हद से ज्यादा खाने में यूज नहीं कर सकते, उसका भी एक लिमिट है। लेकिन लिमिट में जब डालते तो उसका टेस्ट नहीं आता था, इस वजह से लिमिट के बाहर जाकर बहुत ज्यादा तरीके में टेस्टिंग पाउडर अपने खाने में डालते थे, और इस वजह से वो खाने का टेस्ट तो बढ़ता था बट सेहत के लिए थोड़ा हानिकारक था। पता नहीं अब तक हमने कितने ऐसे मिलावटी खाने खाए होंगे जिसके बारे में हमें आइडिया ही नहीं है। आई होप कि आगे चल के सब कुछ चीजें बंद हो जाए, जिस तरीके से FDA काम कर रहा है ये ऐसे करता रहे। सो थैंक यू FDA एंड स्टे ट्यून्ड।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
5: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप्स,
5: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
6: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कॉम्प्युटर Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sirko, Chhatrapati Sambhajinagar.

बहन जी, दादाजी, दादी जी, जो आपके हाथ में मोबाइल है ना, उसको सेफ तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है, वरना आपका भी लाखों का नुकसान हो सकता है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और अपने छत्रपति संभाजीनगर में ऐसे दो केसेस सामने आए हैं जहां पर फ्रॉड हुआ है एक ही तरीके से, दैट्स कॉल्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग। देखो, पैसे हमारे पास होते हैं, हम शेयर मार्केट्स में ट्रेडिंग में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं और फिर सोशल मीडिया के ऊपर कोई एड देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि यार इसके अंदर अगर पैसा हमने इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट हमारा डबल हो सकता है, जहां पर फायर ट्रेडिंग के नाम के ऊपर तकरीबन 22 लाख रुपए से ज्यादा फ्रॉड हो चुका है। तो भाई साहब को ना तो दिसंबर 2025 में एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक मैसेज आता है, जहां पर ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उन्हें लगता है कि यार ये बहुत सेफ है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शुरुआत में उन्होंने बस 15,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू की थी। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे सामने वाली कंपनी ने उनका भरोसा जीता और उन्हें लगा कि नहीं यार, अब तो हम इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट कंपनी ने क्या किया, कमीशन और सिक्योरिटी के नाम पर एक साल में लाखों रुपए उनसे वसूल किए और कमीशन के नाम पर और पैसा डबल करने के नाम पर तकरीबन 20 लाख रुपए इन भाई साहब ने इन्वेस्ट किए। और उसके बाद क्या, जब प्रॉफिट हो गया और पैसा बाहर निकालने की बारी आई तो कंपनी गायब हो गई और वो फ्रॉड था ये बाद में उन्हें समझ में आया। फिर वो बंदे परेशान होकर पुलिस स्टेशन गए, बाकी की चीजें सब हो गई। बट सवाल वही उठता है कि कोई भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट जरा सोच समझ के कीजिएगा और फायर ट्रेडिंग के नाम पर आजकल जो ऐसे फ्रॉड हो रहे इससे बच के रहिएगा। सिंपल तरीका है, कम समय में अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको नजर आ रहा हो ना तो समझ जाना कि दया कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि लालच बुरी बला है, याद रखिएगा, वरना एक गलती आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद कर सकती है। तो बी सेफ।

0: आता इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 78 44.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बोना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी इन्स्टिट्यूट को छत्रपती संभाजी नगर.
4: कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजीच्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
5: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस, सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
6: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26. MGM युनिव्हर्सिटी एंड 6 सिडको. व्हिजिट MGMU.ac.in. कॉल 9503 08 2913.

अगर आपका भी कोई घर 350 साल पुराना हो जाए तो आप क्या करोगे, उसको रिनोवेट करोगे ना? तो बस यही होने जा रहा है अपने शहर में भी। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है और बीबी का मकबरा हम सभी को पता है। और कई सालों से ना तो इसकी मीनारे वक्त की धूल और मौसम की मार से काली पड़ गई थी, लेकिन अब खुशखबर ये आ रही है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि जो ASI है उनका कहना है कि उन्होंने अब इसका रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया है। और सबसे खास बात, ये कोई सादे पेंट वाला काम नहीं होगा। जिस तरीके से सदियों पहले मकबरा बनाया गया था उसी तरीके से और उसी एक परंपरा को आगे ले जाते हुए चूना, गुड़, डिंग और उड़द की दाल इसको मिक्स करके मरम्मत करने वाले हैं। अब सोचोगे कि यार चूना, गुड़, डिंग इससे क्या होगा? भाई साहब, ये सीमेंट वगैरह तो आज के जमाने की बात है। पहले सीमेंट नहीं था तो तब घर ऐसे मकबरे सब इन सब चीजों से बनते थे और आज तक वो बरकरार है। भाई सीमेंट के पुल तो एक पानी में बह जाते, लेकिन इस तरीके से बनाए हुए गेट्स हो, किले हो, ऐसे मकबरे हो, आज तक जैसे के वैसे है। और ये इसलिए करने वाले है पुराने तरीके से काम क्योंकि मकबरे की जो पहचान है, जो हिस्टोरिकल पहचान है, वो बरकरार रहे। आखिर दखन का ताज सिर्फ एक इमारत थोड़ी है, ये हमारी पहचान है, हमारी विरासत है और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल तरीके से एक गिफ्ट है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो जिस तरीके से रिनोवेशन का काम अभी अपने मकबरे का शुरू हो रहा है, उस तरीके से अपने शहर के बहुत सारे गेट्स है जिसकी अपने शहर की पहचान है सिटी ऑफ गेट्स, तो ये गेट्स भी बहुत खराब हो गए है, तो इनको भी रिनोवेशन करने का वक्त आ चुका है। तो इसका भी काम ASI ने जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, इतनी एक दरख्वास्त है, ताकि अपने शहर की पहचान सिटी ऑफ गेट्स है और गेट्स खूबसूरत नजर आएगी तो सिटी अपने आप खूबसूरत नजर आएगी ही, समझे? सो स्टे ट्यून्ड।

आज हम बात करने वाले हैं उन छोटे छोटे चेहरों की जो बिना एक भी लफ्ज बोले हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं. दैट्स कॉल इमोजीज. यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM. RJ अदनान आपके साथ है और आज है 17 जुलाई, यानी कि वर्ल्ड इमोजी डे. लेकिन आपने एक बात नोटिस किया, अगर आप ना तो व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर इमोजी ऑप्शन आप ओपन करते हो और वहाँ पर डेट वाली जो इमोजी है ना, उस पर भी 17 जुलाई ऐसा लिखा होता है. क्यों? क्योंकि इस दिन से इमोजी इजाद हुआ था इस दुनिया में. इसी वजह से ना तो इस डेट को वर्ल्ड इमोजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. इमोजी का आइडिया जापान से आया था. साल 1999 की बात है, जब जापानीज डिजाइनर शिगेटाका कुरिटा, आई थिंक ये प्रोनाउंसिएशन सही है मैंने, शिगेटाका कुरिटा, इन्होंने पहला इमोजी सेट डिजाइन किया था. उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये छोटे आइकॉन दुनिया की सबसे कॉमन लैंग्वेज बन जाएंगे. आज चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, या तो फेसबुक हो, ये ऑफिस की चैट हो, या फिर कोई भी अगर चैट करते हो आपके बंदे से बंदी से, इमोजी के बिना ये अधूरी लगती ही है. यू नो व्हाट, इमोजी सिर्फ आइकॉन नहीं रहे, वो एक शॉर्टकट वाली लैंग्वेज बन चुकी है. तो आज वर्ल्ड इमोजी डे पर एक काम जरूर कीजिएगा, किसी अपने को सिर्फ हाय मत भेजिए, उसके साथ एक प्यारा सा इमोजी भी भेजिएगा. और अगर क्रश को इमोजी भेजना है तो वो तो आप मेरे से ज्यादा होशियार हो, आपको पता है कौन सी इमोजी आपको भेजना है. देखो जो भी इमोजी भेजो भेज दीजिए, उसका रिप्लाई आया तो बताना, आई नो नहीं आएगा, और भी अपनी बातें होगी कुछ ही देर में. तब तक स्टे ट्यून.

0: सोचिए जरा, अगर इमोजी कभी बनी ही नहीं होती तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैट का क्या हाल हो जाता। हेलो, मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमसीएम 90.8 एफएम। ठीक है, बस इतना मैसेज आया। अब सामने वाला सोच रहा है, सच में ठीक है, गुस्सा तो नहीं है ना, या बिजी है यार, इसको क्या हुआ। फिर शुरू होती ओवर थिंकिंग की फैक्ट्री। और अगर किसी ने लिख दिया अच्छा, यानी कि रिश्ता खत्म हो गया क्या, मतलब ऐसे 100 सवाल हमारे दिमाग में होते। बट ठीक है कि आगे एक स्माइली डाल दी तो समझ में आ जाता कि इंसान ठीक है, गुस्से में नहीं है। और ठीक है कि आगे गुस्से वाली इमोजी लगा दी तो समझ में आ जाता है कि इंसान गुस्से में है। तो इतना फर्क पड़ता है इस इमोजी से। और किसी ने लिख दिया अच्छा और आगे ऐसे सस्पेंस वाली इमोजी लगाई तो समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो इतना इमोजी की ताकत होती है, क्योंकि एक छोटी सी इमोजी से एक अच्छा भी फ्रेंडली हो जाता है और एक ठीक है भी गुस्सा हो जाता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, याद रखेगा। तो इमोजी ने सिर्फ चैटिंग को कलरफुल नहीं बनाया, उसने मिसअंडरस्टैंडिंग को भी कम कर दिया है। हाँ, और हाँ, कभी कभी गलत इमोजी सेंड कर दो तो कुछ अलग कॉमेडी हो ही जाती है। इसलिए आज वर्ल्ड इमोजी डे पर याद रखिए, शब्दों का अपना जादू है और इमोजीज उन शब्दों की एक्सप्रेशन है। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान, और भी बहुत सारी बातें होगी अपनी अबाउट इमोजीज। तब तक के लिए बताइएगा कि आपकी फेवरेट इमोजी कौन है। डीएम ऑन इंस्टा आरजे अदनान एंड स्टे
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग एमजीएम युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड बीबीए एलएलबी आणि 15 नंतर 3 वर्षांचा एलएलबी हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी एलएलएम मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च एमजीएम युनिव्हर्सिटी।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशु वैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
5: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
6: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
7: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
8: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
9: ऍडमिशन ओपन एमजीएम युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, आयओटी, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus, N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

कभी नोटिस किया है कि हर इंसान का एक फेवरेट इमोजी होता है? मैंने आपसे पूछा था, आपने बहुत सारे मैसेज मुझे किए। हेलो आरजे अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM और बहुत सारे मैसेज में सेम इमोजी मुझे दिखाई दी। बहुतों का कहना है कि हंसती हुई इमोजी हमारी फेवरेट है। बाय द वे, जिस तरीके से आप इमोजी में हंसते हो, असल जिंदगी में हंसते हो क्या? वो भी एक सवाल है, पूछेगा जरूर। कोई हर बात पर ना तो स्माइली वाली इमोजी भेजता है, कोई हर मैसेज के एंड में दिल वाली इमोजी भेजता है, तो कोई हाथ जोड़कर बात खत्म कर देता है, और कुछ लोग तो बस थंब दिखाते हैं जैसे कि बहुत बिजी हो, और हाँ थंब दिखाकर लगता है कि भाई डन कर दिया। वैसे एक बात याद रखिए, धीरे धीरे ना तो इमोजी हमारी फीलिंग एक्सप्रेस करती है, लेकिन उन फीलिंग्स की जगह कभी वो ले नहीं सकती। तो बस किसी को स्माइली वाली इमोजी भेजने से बेटर है असलियत में हंसिएगा और अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताइएगा। किसी अपने को बस दिल वाली इमोजी भेजने से अच्छा है असल जिंदगी में उससे प्यार जताइएगा और दो चार बार मिलिएगा, बातें कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। बस इमोजी के जरिए फीलिंग समझ में आती है, महसूस नहीं होती। और कभी उदास होने के बाद कभी अपनों से जाकर मिलिएगा, अपने दोस्तों से जाकर मिलिएगा। सैड इमोजी भेजने से बेटर है, उनसे गुफ्तगू करोगे तो सैड वाली इमोजी स्माइली में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। तो आज वर्ल्ड इमोजी डे पर चैलेंज ये है कि अपने फेवरेट इमोजी भेजिए और उसके साथ एक असली वाला मैसेज या कॉल भी कीजिएगा अपने खास लोगों को। मिलता हूँ कुछ ही देर में आपके साथ ढेर सारी बातें करने, तब तक स्टे ट्यून्ड।

0: आता इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 78 44.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर.
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी इन्स्टिट्यूट, छत्रपती संभाजीनगर.
4: कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजीच्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
5: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
6: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26. MGM युनिव्हर्सिटी एंड 6 सिडको. विजिट MGMU.ac.in. कॉल 9503 08 2913.

0: Education is the right choice. It doesn't take long for time and destiny to change. That's why choose MGM University's Dr. G.Y. Patikar College of Computer Science and Information Technology. Exciting career-oriented courses like BCA, BSc Computer Science, BSc Animation, Digital Marketing, Artificial Intelligence and Machine Learning, Integrated MSc Data Science, MSc Information Technology, MSc Computer Science, Data Science and PG Diploma in Animation are waiting for you. Admissions are now open for 2026 and 27. Visit mgmu.ac.in or call 9371714254.
1: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।
2: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
3: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? Institute of Information and Communication Technology, MGM University मध्ये मिळवा Future Ready प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
4: B.Tech in Computer Science and Engineering, B.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning, B.Tech in Information Technology, B.Tech in Data Science,
5: PG, M.Tech in AI and ML, M.Tech Data Science and Information Technology मध्ये PhD करण्याची संधी. किंवा निवडा 12वी नंतर Diploma in Cyber Security and Digital Forensic.
4: Admissions open. For more information call on 9404-94299.

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, आरजे अदनान आपके साथ है आपकी मॉर्निंग गुड करने के लिए इन द शो।
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमटीएम 90.8 एफएम। वैसे शो के स्टार्टिंग में ना तो हम एक गेम खेलते हैं जिसके अंदर मैं आपको एक म्यूजिक सुनाता हूँ और आप मुझे उसका जवाब बताते हो फिल्म कौन सी है। तो म्यूजिक

और ये सिंगर थे इस गाने के लता मंगेशकर जी, और फिल्म का नाम था वो कौन थी। बहुत ही सुपरहिट गाना रहा है और आज तक हर किसी का फेवरेट है, और इस गाने का एकदम सही जवाब दिया है परिणीति काले ने। सो कांग्रेचुलेशन परिणीति काले, आज आप विनर बन चुके हो, आपको हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। सो अपना गिफ्ट वाउचर कलेक्ट करने हमारे स्टूडियो जरूर आइएगा। सो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे गिफ्ट जीतना है तो मेरे सवालों के जवाब देते रहिए और सुनते रहिए।

0: आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और also MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट को छत्रपति संभाजीनगर.
1: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए, तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बायपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर.
2: कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी च्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेस च्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
3: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
4: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26. MGM युनिव्हर्सिटी अँड 6 सिडको. विजिट mgmu.ac.in. कॉल 9503082913.
5: फक्त इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
6: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
5: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
6: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप्स,
5: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891-7844.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM साथ है तो

एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कुक एंड बेक विद राजश्री अग्रवाल इस शो में मैं राजश्री अग्रवाल, कलरी एक्सपर्ट एंड केक आर्टिस्ट, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कुक एंड बेक विद राजश्री अग्रवाल इस शो में आज आप सीखने वाले हो पैनकेक्स आपको कैसे बनाना है, और इसकी वैरायटीज भी हम देखने वाले हैं, कुछ हेल्दी वर्जन भी इसमें रहेंगे और थोड़ा सा देसी ट्विस्ट भी हमने इसमें दिया है। अब पैनकेक होता क्या है, तो देखो पैनकेक जो है एक नरम, हल्का और गोल फ्लैट केक होता है। अभी आप बोलोगे कि केक होता है, केक तो हम केक टिन में बनाते हैं। हाँ, ये केक ही होता है, बट इसे तवे पर बनाया जाता है ना, एक पैन में बनाया जाता है। हमारे इंडिया में जैसे चीले होते हैं, डोसा दिखता है, वैसा ही ये एक तरह का पैनकेक है, लेकिन इसका स्वाद और सामग्री थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ओके, तो पैनकेक कैसे बनता है, यूजुअली आटा होता है। अगर हेल्दी बनाना है तो आप गेहूं का आटा, रागी का आटा यूज कर सकते हो, या तो फिर मैदा भी चलेगा। दूध रहता है इसके अंदर, बेकिंग पाउडर जाती है,

चीनी, मक्खन, ये सारी चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब क्या कि इन सब का हमें एक हल्का सा घोल बनाना होता है और इसे तवे पर डालकर अच्छे से सुनहरा होने तक आपको इसे पका लेना है। ठीक है, अभी पैनकेक खाया कैसे जाता है? इसे आप शहद के साथ में, मैपल सिरप के साथ में, मक्खन के साथ में, ताजे कटे हुए फलों के साथ में, चॉकलेट सॉस के साथ में, इन सभी के साथ आप इसे खा सकते हो। आपको ये सवाल होगा कि क्या ये हेल्दी होता है? एग्जैक्टली, अगर आप इसे गेहूं के आटे के साथ में, ओट्स के साथ में, बाजरा के साथ में, रागी, केला, इसका यूज करके अगर आप बनाते हो तो 100% ये हेल्दी होता है। ठीक है, चीनी इसमें आप थोड़ा सा कम मात्रा में डालिए, तो बच्चों के लिए, टिफिन के लिए, मतलब बच्चों के टिफिन के लिए, नाश्ते के लिए, ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन आपके साथ में हमेशा के लिए हो जाएगा। तो देखो, हम देखते हैं कि बनाना ओटमील पैनकेक्स कैसे बनाने हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ना 1 से 1.5 कप ले लेना है ओट्स। ओके, प्लेन ओट्स जो होते हैं वही आपको लेने हैं। इसके बाद में 3/4 कप डाल देना है आपको इसके अंदर मिल्क। ओके, मिल्क आप जो भी गाय का लेते हो, जो भी मिल्क आप लेते हो वो डाल सकते हो उसके अंदर। उसके बाद में 2 से 3 ले लेना है आपको इसके अंदर बनानास। 1 टीस्पून डालना है आपको इसके अंदर सिनेमन पाउडर। 1 टीस्पून ले लेना है आपको बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून डाल देना है वनीला एसेंस। वनीला एक्सट्रैक्ट भी अगर है वो भी चलेगा। इसे आपको क्या करना है, एक जार में लेकर मिक्सी में से अच्छे से स्मूथ पेस्ट ऐसा बना लेना है, जैसे केक का बैटर होता है, बस उसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो दूध आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इतनी चीजें डालोगे, एक बार अच्छे से मिक्सी में से चला लोगे और उसके बाद में कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए आप अपने हिसाब से दूध जो है वो कम ज्यादा कर सकते हो। अब सभी चीजों को हमने अच्छे से स्मूथ कंसिस्टेंसी में पीस लिया है। अब आपको इसे एक बाउल में निकाल लेना है। एक पैन को आप अच्छे से हीट करोगे। हीट करने के बाद में थोड़ा सा बटर या फिर घर का देसी घी जो होता है वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो। तो छोटे छोटे पैनकेक्स आपको इसके बनाने हैं पैन के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर से आपको बटर डालना है और एक साइड से जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, सुनहरे कलर के होने के बाद में आपको इन्हें टर्न कर देना है। ठीक है, तो दूसरी ओर से भी आपको बटर या घी डालकर अच्छे से सेक लेना है दोनों साइड से। इसके बाद में आपको इसे निकाल लेना है। पैनकेक्स जो अरेंज होते हैं ये एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, रखने के बाद में अगर आप पसंद करते हो तो आप चॉकलेट सॉस भी डाल सकते हो, नहीं तो आप शहद डाल सकते हो, मैपल सिरप होता है वो आप इसके ऊपर ड्रिजल कर सकते हो, जो भी आप पसंद करते हो उन तीनों में से आप ये कोई भी चीज डाल सकते हो। इसके बाद में कटे हुए फ्रेश फल जैसे स्ट्रॉबेरी, बनाना, ये जो भी आपके पास अवेलेबल है वो फल आप इसके ऊपर रखोगे और आपको इसे सर्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से बढ़िया सा बनाना ओटमील पैनकेक जो है आप घर पे बना सकते हो। आप इसे बच्चों के टिफिन में दे सकते हो, खुद के ब्रेकफास्ट में खा सकते हो। बहुत अच्छा और हेल्दी ऑप्शन आप सभी के पास में ये हो जाएगा। अभी जिस तरह से हमने ये पैनकेक्स बनाए हैं, इसी तरह से आप गेहूं के आटे से भी पैनकेक्स जो है वो बना सकते हो। जस्ट आपको करना क्या है, 1 कप आपको ले लेना है गेहूं का आटा, एक बाउल में ले लिया। इसी में ही आपने डालना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ओके, 1/2 टीस्पून डाल देना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऑप्शनल है, सिर्फ अगर आपको बेकिंग पाउडर ही डालना है तब भी सफिशियंट है, बेकिंग सोडा नहीं भी डालना है तब भी चलेगा। चीनी की जगह पे हम यहाँ पे डाल रहे हैं जैगरी पाउडर, वो आपको डाल देना है 3 से 4 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। देखो, जो लोग मीठा पसंद करते हैं वो लोग चीनी डालेंगे, लेकिन चीनी अगर आप इसमें इस्तेमाल करते हो तो ये हेल्दी ऑप्शन नहीं रहेगा। ओके, इसके लिए हमने यहाँ पे चीनी की जगह पे जैगरी का पाउडर लिया है। ठीक है, अभी 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें डाल रहे हैं जैगरी का पाउडर। तो आपको अगर थोड़ा सा और हेल्दी बनाना है और अगर आप कम मीठा खा सकते हो तो आपने 1 से 2 टेबलस्पून जैगरी पाउडर डाला तो भी चलेगा।
टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ही डालना है इसके अंदर, 1/4 टीस्पून नमक। ओके, नमक इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, 1/4 टीस्पून से भी कम डालते हो तब भी चलेगा, ठीक है, 1/8 टीस्पून भी डाल सकते हो। इसके बाद में मेल्टेड बटर लेना है, बटर को हल्का सा मेल्ट कर लेना है, 3 से 4 टेबलस्पून इसी आटे में आपको बटर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद में कर्ड लोगे 1 कप और इसे अच्छे से फेंट लेना है आपको। फेंट लेने के बाद में वो आपको इसके अंदर डाल देना है। अब देखो, कर्ड ही डालो या तो फिर दूध का इस्तेमाल करो, ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि आप लोग दूध और विनेगर ये डालकर और फिर बनाते हो, तो सभी को ही वो चलेगा ऐसा नहीं होता है। अगर आपने दूध और विनेगर का इस्तेमाल किया तो बहुत सारे लोगों को एलर्जी जैसा हो जाता है, कहीं पे खुजली वगैरह होती है, तो इस तरह से अवॉइड करिए दूध और विनेगर डालने का। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो ना, या तो आप इसके अंदर कर्ड डाल सकते हो यानी कि दही, या तो फिर आपने दूध डाला तो भी चलेगा, ठीक है। दूध और विनेगर साथ में मत डालिए। इसके बाद में हमें इसके अंदर डालना है, 1 टीस्पून डाल दोगे आप इसके अंदर वनीला एसेंस, और इन सबको मिला के अच्छा सा घोल जो है बैटर आपको बना लेना है, ठीक है। जब आप बैटर मिक्स कर रहे होगे तो विस्क का यूज करना, मतलब हमने इसमें गेहूं का आटा लिया है, ओके। तो गेहूं के आटे को मिक्स करते समय अगर आप विस्क का यूज करते हो तो उसमें लम्स जो है, गुठलियां जो है, वो नहीं बनेगी। सो इसके लिए जब भी ये बैटर या मिश्रण मिक्स कर रहे हो तो आप विस्क का यूज करो, तो आपका बैटर जो है वो स्मूथ कंसिस्टेंसी में और अच्छा से मिक्स होके बन जाएगा। बैटर जैसे ही रेडी हो जाता है, अभी आपको एक पैन यानी कि तवा जो है वो आपको हीट करना है। तवा जैसे ही हीट हो जाता है तो आपको इसके ऊपर बटर या घी अप्लाई करना है ब्रश से, ठीक है। आपने इस छोटे छोटे ये बैटर के छोटे छोटे पैनकेक्स जो है वो तवे पे आपको डाल देना है। कंसिस्टेंसी जो है जैसे हमारी केक की कंसिस्टेंसी होती है केक के बैटर की, बस उसी तरह से कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए थोड़ी सी थिक फॉर्म में, ओके। लूज कंसिस्टेंसी या फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हमें नहीं।

की फ्लेम जो है ये मीडियम टू लो पे रहनी चाहिए. ओके, फुल फ्लेम पे अगर आप इसे सेकते हो तो होगा क्या कि पैनकेक बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर की साइड वो कच्चे ही रहेंगे. ठीक है, तो इसके लिए जब भी पैनकेक सेक रहे हो तो इसे दोनों ओर से होने देना है. और याद रहे कि गैस की फ्लेम जो है ये आपको मीडियम टू लो रखनी है, हाई फ्लेम आप बिल्कुल नहीं रखोगे. ओके, तो इस तरह से सारे पैनकेक्स बना लेने हैं और निकाल कर जो भी आप पसंद करते हो, मैपल सिरप, चॉकलेट सॉस या फ्रेश फ्रूट्स, ये डालकर आपको इसे सर्व करना है. ठीक है, तो इस तरह से हेल्दी वाले बनाना ओटमील पैनकेक्स, गेहूं के आटे से बने हुए पैनकेक्स ये आप बना सकते हो. ओके, ये हमने दो पैनकेक्स जो है ये देख लिए. अभी हम थोड़ा सा हमारे देसी पैनकेक्स की तरफ आ जाते हैं. अभी ये जो बताया हमने ये थोड़ा सा स्वीट टेस्ट में जाएगा या कम स्वीट टेस्ट में भी जाएगा. अभी ये जो है ये थोड़ा सा स्पाइसी आ जाएगा. ओके, तो पोहा और रवा, रवा सबको पता है सूजी होता है ना, जाड़ा रवा जिसको बोलते हैं, तो मोटा वाला रवा ले लिया और पोहा, इनसे बने हुए पैनकेक्स हम देखेंगे. ये सभी को पसंद आते हैं. ओके, फिर जो है वो किसी किसी को पसंद आते हैं, जो थोड़ा सा हेल्दी खाना पसंद करते हैं वो खा लेते हैं उस तरह से, बट जिनको स्पाइसी टेस्ट पसंद है वो लोगों के लिए ये पैनकेक बनने वाला है. ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मिक्सी का जार ले लेना है और इसके अंदर डाल देना है आपको एक कप पोहा. अभी साथ ही में आप इसके अंदर डालोगे एक कप रवा. ओके, इसे अच्छे से मिक्सी में से पीस लेना है, दरदरा पीसना है, एकदम पाउडर फॉर्म में भी मत करिए. अगर पसंद करते हो तो पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा दरदरा रखते हो तो टेस्ट जो है थोड़ा सा अच्छा आएगा. ओके, तो इसे आपको एक बाउल में ले लेना है निकाल कर. इसके बाद में अभी अलग से आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना है. एक आपको प्याज कट कर लेना है, आधा आप गाजर को ग्रेट कर लोगे या तो फाइनली चॉप किया तो भी चलेगा. एक छोटा सा टोमेटो लोगे, इसे भी फाइनली चॉप कर लेना है. इसके बाद में आपको ले लेना है आधा कप कटा हुआ हरा धनिया, जिसे अच्छे से वॉश करके यूज करना है. ठीक है, ये सारी चीजें जो बाउल में हमने पोहा और रवा अच्छे से पीस लिया था और डाल दिया था, उसी बाउल में आपको ये चीजें ऐड कर देनी है. ओके, प्याज ऐड कर दिया, गाजर ऐड कर दिए, उसके बाद में एक छोटा टोमेटो ऐड कर दिया और कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया. ठीक है, अभी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालोगे इसके अंदर नमक, 1 टीस्पून डालना है आपको जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून डालना है आपको इसके अंदर हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून डालना है आपको इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर. ठीक है, ये लाल मिर्च का जो पाउडर है ना, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो. अगर तीखा पसंद करते हो तो जैसे हमने 1 टीस्पून डाला, ओके, लाल मिर्च का पाउडर, आप 2 टीस्पून भी डाल सकते हो अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो. और अगर आपको कम तीखा पसंद है तो हमने 1 टीस्पून डाला तो उसके जगह पे आप 1/2 टीस्पून भी डाल सकते हो. ओके, तो इस तरह से लाल मिर्च पाउडर आप इसमें डाल दोगे. अगर आपको लाल मिर्च पाउडर नहीं डालना है तो इसके जगह पे आप हरे मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हो, या तो छोटे छोटे करके हरे मिर्च के पीसेस भी डाल सकते हो. टुकड़ों में आपको हरी मिर्च को कट कर लेना है और वो टुकड़े ही आपको इसके अंदर ऐड कर देना है. ठीक है, अभी आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है. ठीक है, और पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देना है. स्पैचुला से मिक्स करोगे या बस से मिक्स करोगे दोनों भी चलेगा. बस याद ये रखना है आपको कि इसके अंदर गुठलियां जो है वो नहीं बननी चाहिए. ओके, तो विस्क भी किया तो भी चलेगा. तो देखो इसे आपको क्या करना है ना, साइड में छोड़ देना है ढककर 1-10 मिनट के लिए. ओके, ढक के छोड़ दिया, 10 मिनट बाद क्या होता है ना कि इसमें जो रवा हमने डाला है वो अच्छे से फूल जाता है. अगर इसके बाद में आपको लगे कि कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो गई है तो थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हो. ओके, तो 10 मिनट बाद हमने इसे निकालना है. उसके अंदर अब हमने 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर देना है बेसन, घर का बेसन जो होता है पीसा हुआ वो आपको इसके अंदर ऐड करना है और इसे अच्छे से फेंट लेना है आटे को. अब आपको एक तवा हीट करना है.

0: बाद जैसे ही हीट हो जाता है तो आपको इसके ऊपर डाल देना है ऑयल। ओके, ऑयल डालकर इसके ऊपर छोटे छोटे पैनकेक्स बना लेने हैं। ये जो पैनकेक है आप इसे बड़ा भी बना सकते हो, जैसे हम उत्तप्पा बनाते हैं बस उसी तरीके का, ठीक है। तो उस तरह से बना लेना है आपको। कंसिस्टेंसी जो है ये आपको थोड़ी सी तीखी रखना है। ओके, लूज कंसिस्टेंसी हमें नहीं चाहिए। जैसे ही एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाता है तो पैनकेक को टर्न कर देना है और दूसरे ओर से भी इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक ऑयल डालकर सेक कर निकाल लेना है। तो इस तरह से बढ़िया सा पोहा और सूजी से बना हुआ पैनकेक जो है आप बना सकते हो। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो या तो आप इसे डिनर में भी खा सकते हो। देखो, जो भी लोग डाइट करते हैं ना, तो डाइट में ये पैनकेक जो है ये 100% आप शामिल कर सकते हो। देखो, पहले जो हमने देखा है बनाना ओटमील पैनकेक, तो वो भी एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है। आप उसे ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हो या तो फिर आप इसे डिनर में भी रख सकते हो, ठीक है। उसी तरह से जो हमने गेहूं के आटे से बना हुआ पैनकेक देखा था, तो वो भी आप अपने ब्रेकफास्ट में या तो फिर डिनर में ले सकते हो। और ये जो है पोहा और सूजी से बना हुआ पैनकेक, तो इसे भी आप अपने ब्रेकफास्ट में या डिनर में ले सकते हो। डाइट कर रहे हो तो इस तरह के पैनकेक्स जो है ये आपकी डाइट में ज़रूर आपने लेने चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना कि बनाना ओटमील पैनकेक जो है ये आपको वेट लॉस करने में मदद करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, इससे वजन नियंत्रण रखने में आपको मदद भी मिलेगी और आपका पेट जो है ये खाने से भरा रहेगा। अभी क्या होता है कि पचने में ये आसान होते हैं और फाइबर से भरपूर होते हैं। ओटमील जो है ये एक घुलनशील फाइबर होता है, तो फाइबर आपका पाचन तंत्र जो है ये ठीक रखता है। और इससे क्या होता है ना कि लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगने देता है ये। ओके, अभी इसमें हमने नेचुरल शुगर ली है, मतलब हमने इसमें पके हुए बनाना का यूज किया है, जो बनाना ओटमील पैनकेक्स है। तो इसमें चीनी का हमने इस्तेमाल ही नहीं किया है, चीनी को हमने सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे पके हुए केले यूज करे हैं, ठीक है। तो शुगर डालने की आपको इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी। और दूसरी चीज की आपको इससे एनर्जी भी मिलेगी। अगर आप मॉर्निंग में ये ब्रेकफास्ट में खा लेते हो बनाना ओटमील पैनकेक्स, तो इससे क्या होता है ना, पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहोगे, जैसे कि दिन भर आप एक्टिव रहोगे। ओके, और तीसरी चीज है कि वजन नियंत्रण करने में आपको ये मदद करेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि कैलोरीज कम होती है। ओके, तो इस मतलब मैंने जैसे बताया कि इसको अगर आप खाते हो तो बार बार कुछ ना कुछ खाने की जो आपकी इच्छा है वो नहीं होगी, क्योंकि इससे पेट जो है ये आपका भरा हुआ रहेगा। और न्यूट्रिशन के बारे में अगर बताना चाहो तो देखो, इसमें बहुत सारा पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है। तो जो भी हमें बॉडी के लिए जरूरी तत्व है वो सारे इसमें मौजूद है। तो 100% एक बेस्ट डाइट आपका ये हो सकता है, ठीक है। तो आप इसे आपकी डाइट में जरूर शामिल कीजिएगा। अभी हमने अलग अलग तरीके से पैनकेक्स बनाना देख लिए। अभी और एक जो सबको पसंद आएगा ऐसा एक पैनकेक्स देखने वाले हैं। तो देखो, ये होते हैं वेज पैनकेक, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे ना, अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स आपको इसमें ऐड करने हैं। अभी 3 से 4 वेजिटेबल्स में डालकर आपको एक रेसिपी बता रही हूँ, पर आप इसके अंदर अपने पसंदानुसार जो भी वेजिटेबल्स आप पसंद करते हो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बोला है कि आपको इसके अंदर एक कैरेट लेना है, एक आपको प्याज लेना है, एक थोड़ा सा कैबेज ले लोगे 1 कप के करीब, साथ में आपको आलू लेना है 1, या तो शिमला मिर्च, ये सारी चीजें 1-1 लेना है। एक आपने कैरेट ले लिया, गाजर, एक आपने प्याज ले लिया, ओके। उसके बाद में एक कप लेना है कटा हुआ आपको कैबेज यानी कि पत्ता गोभी। इसके बाद में 1 आलू ले लेना है और 1 शिमला मिर्च ले लेना है। अभी आप इसे लंबाई में जितना थिन कट कर सको उस तरह से थिन आपको ये पीसेस जो है इसके कर लेना है। अगर आपको थिन पीसेस नहीं आते हैं तो आप इसे स्क्वायर में भी कट कर सकते हो या फाइनली चॉप भी आप इसे कर सकते हो। तो मैंने जो वेजिटेबल्स बताए हैं इसके अलावा भी अगर आपको कोई और वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर किसी को इसके अंदर ब्रोकली ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, या तो फिर बच्चे घर में जो भी चीज नहीं खा रहे हैं वो आप इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से सारे वेजिटेबल्स एक बाउल में ले लिए हमने, इसे लंबाई में पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेना है या तो फाइनली चॉप कर लेना है। अभी सारे वेजिटेबल्स को बाइंडिंग लाने के लिए हमने इसके अंदर बेसन का आटा और राइस का आटा इसका यूज किया है, ठीक है। तो एक 2 से 3 टेबलस्पून डाल देना है आपको इसके अंदर बेसन चना दाल का, और साथ में डाल देना है आपको 2 से 3 टेबलस्पून राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपको अपने स्वाद अनुसार पसंद करते हो तो थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी डालेंगे हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर डालेंगे हम इसके अंदर 1 टीस्पून, अगर जीरा पाउडर भी पसंद करते हो तो 1/4 टीस्पून आप डाल सकते हो, अजवाइन आपको डालना है 1/4 टीस्पून, और ब्लैक पेपर पाउडर डालना है आपको इसके अंदर 1/2 टीस्पून। अभी देखो और एक चीज आप इसके अंदर करोगे, या तो ब्लैक पेपर पाउडर डालो या तो फिर लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डालो। अगर आपको ब्लैक पेपर पाउडर डालना है तो आप लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी को स्किप कर सकते हो, और अगर आप लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी डाल रहे हो तो आप काली मिर्च को स्किप कर सकते हो, ठीक है, ब्लैक पेपर पाउडर को। दोनों में से ना किसी एक का फ्लेवर इसमें ज्यादा अच्छा आएगा, या तो ब्लैक पेपर पाउडर डाल दीजिए या तो फिर मिर्ची और हल्दी डाल दीजिए, और लास्ट में डाल देना है आपको इसके अंदर नमक, ठीक है, स्वाद अनुसार। इस सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा गाढ़ा ही रहेगा ये, है ना, इसमें पानी नहीं डालना है हमें, तो थिक रहेगा ये। तो आपको ऐसे ही पानकेक छोटे छोटे तवे पे इसके बना लेने हैं। क्या करोगे, एक तवा हीट करोगे अच्छे से, तवा जैसे ही हीट हो जाता है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने के बाद में ये जो मिश्रण हमने बनाया है इससे छोटे छोटे पैनकेक्स जो है ये आपको बना लेने हैं, ओके। और फिर आपको क्या करना है, एक साइड से इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देना है और फिर इसको फ्लिप कर देना है, और टर्न करके आपको इसे अच्छे से दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेक कर निकाल लेना है, ठीक है। आप इसको चटनी या सॉस के साथ में सर्व कर सकते हो। कभी ये वेजिटेबल पैनकेक्स है तो बच्चों के लिए ना ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, मतलब ऐसे कि बच्चे ऐसे सब्जियां खाते नहीं है, है ना, कितना भी आप दे दो, लेकिन जब आप इस तरीके से पैनकेक में उन्हें सब्जियां डालकर दोगे तो मतलब बच्चे तो पसंद से खाएंगे ही, उसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा और उन्हें जो पोषण तत्व मिलना चाहिए तो वो भी उन्हें मिलेंगे, है ना। तो इसके लिए आप बच्चे जो पसंद नहीं करते हैं वो भी वेजेस आप इसके अंदर ऐड करके डाल सकते हो। बस आपको करना क्या है कि मैंने जैसे बताया आपको कि गाजर लिया, प्याज लिया, शिमला ली, उसके बाद में हमने कैबेज डाला, आलू डाला, तो इसके जगह पे आपको आपकी या फिर इसके साथ में भी डाल सकते हो। ये 4-5 सब्जी आपने कट करके डाली, साथ ही में फिर आपको जो भी डालना है वो भी सब्जी आप इसी के साथ में डाल सकते हो। तो इस तरह से आप इसके अंदर वेरिएशन ला सकते हो, ओके। अभी देखो ये जो पैनकेक्स के रेसिपीज है ना, इससे आप कई तरीके के पैनकेक्स बना सकते हो। जैसे अभी हमने देखा था कि गेहूं के आटे का पैनकेक, ओके, तो उसमें हमने क्या किया था ना, 1 कप लिया था गेहूं का आटा पैनकेक बनाने के लिए। अभी आपको क्या करना है, इसके जगह पे लेना है रागी का आटा, मतलब आप और हेल्दी ऑप्शन की जगह पे चले गए, ठीक है। एक बाउल लिया, उसके अंदर आपने डाल दिया 1 कप रागी का आटा, बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो एज इट इज आपको रखनी है, ठीक है। 1 टीस्पून आप डालोगे इसके अंदर बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून डाल देना है आपको इसके अंदर बेकिंग सोडा, जैगरी पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से या तो फिर 2 से 3 टेबलस्पून आप इसके अंदर जैगरी पाउडर डाल सकते हो। उसके बाद में नमक यहाँ पे एकदम थोड़ा सा डालना है, 1/8 टीस्पून के करीब, ओके, एक पंच। उसके बाद में 3 टेबलस्पून डाल देना है आपको यहाँ पे मेल्टेड बटर। इसको आपको दूध डालकर एडजस्ट करना है, इसकी कंसिस्टेंसी जो है, तो ये घोल जब बनाओगे तो दूध डालना है आपको, ठीक है। जैसे गेहूं के आटे से हमने बनाया था तो उसमें हमने कर्ड का इस्तेमाल किया था, ओके, उसमें हमने कर्ड डाला था। यहाँ पे आपको इसके अंदर दूध ऐड करना है। अभी 1 टीस्पून डाल दोगे यहाँ पे वनीला एसेंस और आपको इसे अच्छे से घोल बना लेना है, ठीक है। मतलब क्या करना है कि बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो सेम रहेंगे, बस गेहूं के आटे के जगह पे हमने यहाँ पे रागी फ्लावर जो होता है वो यूज किया है। रागी का आटा अगर घर पे बनाते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक चीज की रागी जब पिसाते हो तो इसे अच्छे से वॉश कर लेना है, ठीक है, धोके इसे सुखा दोगे और फिर आपको इसे चक्की पे से पीस कर लेके आ जाना है। अभी और एक चीज याद रखना है आपको इसके अंदर की गेहूं का आटा, रागी का आटा, रागी को ना नाचनी बोलते हैं महाराष्ट्र में, है ना, तो वो जब आप पिसा के किसी चीज में यूज कर रहे हो तो ज्यादा फाइबर के लिए आपको एक चीज करना है कि इसे छानना नहीं है, है ना। छान कर आप क्या करते हो कि फाइबर इसका निकाल लेते हो, तो इसको बिना छाने ही अगर आप यूज कर पाओ तो वो ज्यादा हेल्दी और अच्छा रहेगा। तो रागी का आटा जब ऐड कर रहे हो तो बिना छाने ही आपको इसे यूज करना है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, इसे अच्छे से घोल बना लिया और जैसे हमने इसे दोनों ओर से तवे पे गोल्डन ब्राउन होने तक सेका था, बस उसी तरह से आपको इसे सेकना है, ठीक है। जब सर्व कर रहे हो तो एक पे एक पैनकेक्स आपको रख देने हैं, 5 से 7 जितने भी आपको खाने हैं, ओके, छोटे छोटे रहेंगे, साइजेस इसकी छोटी छोटी रहेंगी। और ऊपर से आप मैपल सीरप डालोगे, अगर नहीं पसंद आता है तो फिर आप हनी भी डाल सकते हो, है ना, शहद। उसके बाद में कुछ बनानास आपको कट कर लेने हैं, स्ट्रॉबेरीज आप ले सकते हो और वो आपको इसके ऊपर रख देना है और सर्व करना है। तो इस तरह से हेल्दी वजन जो हमने गेहूं के आटे से पैनकेक बनाया, उसी तरह से रागी के आटे से भी आप पैनकेक जो है वो बना सकते हो। और हेल्थ मतलब हेल्दी तो है ही, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और हमने यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट की चीनी का यूज नहीं करा है, ठीक है। मतलब हमने कुछ इसमें डाला है कि यहाँ पे जैगरी पाउडर डाली है हमने, जैसे गेहूं के आटे का बनाया, रागी का बनाया, तो जो हमने बनाना ओटमील बनाया उसमें हमने बनाना का यूज किया, मतलब नेचुरल शुगर हमने उसमें ऐड करी। जो ऊपर से चीनी डालना है वो हमने किसी में भी नहीं डाली है, ओके। और 2 जो पैनकेक्स थे वो हमने थोड़े से स्पाइसी देख लिए, जो देसी स्टाइल में, ओके। एक पोहा और रवा वाला देखा हमने, और एक हमने देख लिया कि सारे वेजिटेबल्स डालकर आप पैनकेक बना सकते हो। तो देखो इस तरह से वेरिएशन आप पैनकेक्स में ला सकते हो और 7 दिन के 7 अलग अलग पैनकेक्स आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हो। मतलब ऐसे होता है ना कि हमारा सुबह सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, यहाँ से कितनी औरतों का दिन जो है वो शुरू होता है ना, रोज रोज क्या बनाए। तो ये इस तरह से अगर आप पैनकेक सीख लोगे ना तो 100% आप 7 डेज तक अलग अलग अलग अलग नाश्ता जो है ये घर वालों को और बच्चों को खिलाओगे। तो इस तरह से आप और भी अपना थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज करके 1-2-3 इंग्रेडिएंट्स अलग थोड़े से ऐड करके इस तरह से और भी पैनकेक्स जो है वो बना सकते हो। तो जितनी भी आज के शो में हमने ये रेसिपी सीखी है ये आप घर पे जरूर ट्राई करना, और आपकी रेसिपीज कैसी हो रही है ये हमें बताने के लिए बिल्कुल नहीं भूलना है, ओके। सो स्टे ट्यून्ड विद MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए स्वाद और नई खुशबू के साथ में। हैप्पी कुकिंग।
1: मतदारांनो, SIR 2026 अंतर्गत गृहभेटीपूर्वी voters.eci.gov.in किंवा ECI नेट ऍप वर मागील SIR मतदार यादीतील आपले किंवा आई वडिलांचे तपशील शोधा, नाव नमूद नसेल तर आवश्यक कागदपत्र तयार ठेवा, स्वाक्षरी युक्त भरलेला गणना अर्ज BLO ना सादर करा आणि एक प्रत स्वतः जवळ ठेवा।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: जांबाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
2: साथ है तो बात है।

होंग दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहा होगा। अगर दिन थोड़ा थका देने वाला भी रहा है तो कोई बात नहीं, अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स होने का, मुस्कुराने का और अपने लिए कुछ पल निकालने का। शाम का अपना ही एक अलग जादू होता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब ठंडी हवा चलती है और मन थोड़ा सुकून ढूंढता है तब अच्छे गाने उस पल को और भी खास बना देते हैं। तो चाहे आप ऑफिस से घर लौट रहे हो, परिवार के साथ समय बिता रहे हो, दोस्तों के साथ हो या बस अपनी चाय या कॉफी का आनंद ले रहे हो, हमारी कोशिश है कि आपका ये सफर और भी खूबसूरत बन जाए। आने वाले गानों से मिलेगा प्यार, दोस्ती, खुशियाँ और यादों का खूबसूरत एहसास। इसीलिए मुस्कुराइए, टेंशन को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए और इस प्यारे से शाम को संगीत के नाम कर दीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा, आप सुन रहे हैं दिल से। कहीं मत जाइए क्योंकि अब शुरू होने वाला है शानदार गानों का सिलसिला सिर्फ आपके लिए, ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप्स.
1: लिमिटेड सीट्स. आजच एमजीएम विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891 7444.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए एमजीएम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और आल्सो एमएससी स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. एमजीएम यूनिवर्सिटी, इंस्टिट्यूट को छत्रपति संभाजी नगर.
4: कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी या यूजी आणि पीजी साठी एडमिशन मिळवा. बीटेक आणि एमटेक कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी साठी एमजीएम यूनिवर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेस च्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
5: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
6: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26. एमजीएम यूनिव्हर्सिटी एंड 6 सिडको. व्हिजिट mgmu.ac.in. कॉल 9503082913.
7: Dream it, believe it, and achieve it. At MGM University's Institute of Management and Research, every dream finds the right direction. Learn with innovation, grow with confidence, and build a future filled with opportunities. From BBA and BCom to MBA, Executive MBA, and Business Analytics, and AI in Business, every step prepares you to lead with excellence. Admissions open for 2026 and 27. Visit mgmu.ac.in or call 7666-8783-89.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आपकी शाम अच्छी जा रही होगी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस होना बिल्कुल आम बात है। कभी काम का प्रेशर, कभी पढ़ाई का टेंशन, तो कभी जिम्मेदारियों का बोझ। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्ट्रेस को थोड़ा थोड़ा करके कम किया जा सकता है। सबसे पहले खुद को थोड़ा समय दीजिए, 5 मिनट के लिए गहरी सांस लीजिए, अपने पसंदीदा गाने सुनिए या फिर थोड़ी देर टहलाइए। यकीन मानिए, छोटी छोटी बातें भी मन को हल्का कर देती है। अगर मन में बहुत कुछ चल रहा हो तो किसी अपने से खुलकर बात कीजिए। कई बार सिर्फ अपनी बात कह देने से ही आधा तनाव कम हो जाता है। और हाँ, हर बात को दिल पर लेना भी ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। याद रखिए, आपकी मुस्कान और आपकी सेहत किसी भी टेंशन से ज़्यादा कीमती है। इसलिए खुद का ख्याल रखिए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा मुस्कुराइए और हर दिन अपने लिए कुछ अच्छे पल ज़रूर निकालिए। इसी पॉजिटिव सोच के साथ अब वक्त है कुछ ऐसे शानदार गानों का जो आपके मूड को और भी बेहतर बना देंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ इन द शो दिल से, क्योंकि अच्छी शाम और अच्छे संगीत हमेशा साथ चलते हैं। Only on MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: if education is the right choice, it doesn't take long for time and destiny to change. That's why choose MGM University's Dr. G.Y. Patikar College of Computer Science and Information Technology. Exciting career-oriented courses like BCA, BSc Computer Science, BSc Animation, Digital Marketing, Artificial Intelligence and Machine Learning, Integrated MSc Data Science, MSc Information Technology, MSc Computer Science, Data Science and PG Diploma in Animation are waiting for you. Admissions are now open for 2026 and 27. Visit mgmu.ac.in or call 9371714254.
1: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।
2: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
3: तुमचे करियर साठी योग्य पर्याय शोधता है? Institute of Information and Communication Technology, MGM University मध्ये मिळवा Future Ready Program ची सुवर्ण संधी.
4: B.Tech in Computer Science and Engineering, B.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning, B.Tech in Information Technology, B.Tech in Data Science,
5: PG, M.Tech in AI and ML, M.Tech Data Science and Information Technology मध्ये PhD करण्याची संधी. किंवा निवडा 12वी नंतर Diploma in Cyber Security and Digital Forensic.
4: Admissions open. For more information, call on 9404-94299.

आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। गर्मी हो या मौसम थोड़ा उमस भरा हो, अपने शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में एक ग्लास ताज़ा फलों का जूस आपके दिन को और भी फ्रेश बना सकता है। संतरे का जूस हो, आम का, अनार का या फिर मौसमी का, हर फल अपने साथ स्वाद भी लाता है और ताजगी भी। अगर हो सके तो घर पर बना ताज़ा जूस पीने की आदत डालिए। इसमें स्वाद भी होता है और फल का प्राकृतिक गुण भी बना रहता है। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखिए, जहाँ तक हो सके बिना ज़्यादा चीनी मिलाए जूस पीजिए, और अगर पूरा फल खाने का मौका मिले तो वो और भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उसमें फाइबर भी मिलता है। तो आज की शाम अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए, अपने पसंद का एक ताज़ा जूस बनाइए, आराम से बैठिए और इस म्यूज़िक का मज़ा लीजिए। छोटी छोटी अच्छी आदतें हमें हर दिन बेहतर महसूस कराती है। चलिए अब इसी ताजगी और शानदार म्यूज़िक का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इन द शो दिल से, क्योंकि यहाँ हर शाम होती है खुशियाँ, पॉजिटिविटी और बेहतरीन गानों के नाम। ओनली ऑन एम जिम नाडी पोनेटिव फिल्म, साथ है तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी अपनी चमक नहीं खोते, उन्हें सुनते ही यादें ताज़ा हो जाती है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। ऐसा ही एक सदाबहार गाना टिप टिप बरसा पानी। इस गाने की धुन, इसका रोमांटिक अंदाज और बारिश का खूबसूरत एहसास इसे आज भी लोगों को पसंदीदा बनाता है। चाहे पुराने गाने की शौकीन हो या नई पीढ़ी के म्यूजिक लवर्स, इस गाने का अपना ही एक अलग जादू है, एक अलग मौसम है और ऑफ कोर्स एक अलग ही वाइब है। बारिश का मौसम हो या बस दिल में रोमांटिक वाइब्स हो, ऐसे गाने हर पल को खास बना देते हैं। जिंदगी की यही खूबसूरती है कि ये हमें यादों, एहसासों और मुस्कुराहटों से जोड़ देती है। तो अगर आप भी इस शाम को थोड़ा और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। अब बारी है उस सदाबहार गाने की जिसे सुनकर बारिश की यादें और भी हसीन हो जाती है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे मनीषा आपके साथ इन द शो दिल से। अब सुनते हैं ये शानदार गाना जिसे सुन के आपका मूड और भी फ्रेश हो जाएगा। ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे मग एमजीएम युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड बीबीए एलएलबी आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा एलएलबी हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी एलएलएम मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। या सोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च एमजीएम युनिव्हर्सिटी किंवा विजिट mgmu.ac.in।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
4: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स।
4: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
5: एडमिशन ओपन एमजीएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट एमजीएम कैंपस N6 छत्रपति संभाजीनगर।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश का मौसम जितना सुहाना लगता है उतना ही अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस मौसम में नमी बढ़ने की वजह से बैक्टीरिया और वायरस जल्दी फैल जाते हैं, इसलिए कई लोगों को सर्दी खांसी या वायरल जैसी परेशानियाँ हो जाती है। ऐसे में अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि ताज़ा और घर का बना खाना ही खाए। मौसमी फल और हरी सब्जियां अपने डाइट में शामिल करें और दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहे। अगर बारिश में भीग जाए तो घर पहुंचकर जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहन ले, अच्छी नींद ले और हल्की फुल्की एक्सरसाइज या वॉक के लिए भी थोड़ा समय निकाले। छोटी छोटी अच्छी आदतें आपकी सेहत को मजबूत बनाए रखने में मदद करती है। याद रखिए, स्वस्थ रहेंगे तो हर मौसम का मजा दोगुना हो जाएगा। इसीलिए इस मानसून बारिश का आनंद भी लीजिए और अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखिए। इसी पॉजिटिव सोच के साथ अब वक्त है शानदार गाने का। जुड़े रहिए इन द शो दिल से, क्योंकि अच्छी सेहत और अच्छे गाने दोनों जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। आप सुनते रहिए आपका फेवरेट शो दिल से और ऑफ कोर्स ओनली ऑन एमजी 90.8 एफएम। साथ है तो बात है। 10, 9, 8, 7.

0: नव्हे इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891 7844.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बोना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी इन्स्टिट्यूट छत्रपति संभाजी नगर.
4: कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजीच्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
5: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
6: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26. MGM युनिव्हर्सिटी N6 सिडको. विजिट MGMU.ac.in. कॉल 9503 08 2913.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश का मौसम अपने साथ न जाने कितनी यादें लेकर आता है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही हो, खिड़की पर बारिश की बूंदे गिर रही हो, हाथ में चाय या गर्मा गर्म पकौड़े हो और टीवी पर आपका पसंदीदा कार्टून चल रहा हो, सच कहे तो ये एहसास किसी छोटी सी खुशी से कम नहीं होता। बचपन में हम सबका कोई ना कोई फेवरेट कार्टून जरूर रहा होगा, उसे देखते ही आज भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यही तो जादू है उन यादों का, जो उम्र के साथ कभी भी पुरानी नहीं होती। कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा ब्रेक लेना भी जरूरी होता है। अपने अंदर के उस बच्चे को फिर से मुस्कुराने का मौका दीजिए। बारिश की ठंडी फुहारों के बीच थोड़ा रिलैक्स कीजिए, अपने पसंदीदा कार्टून का एक एपिसोड देखिए और कुछ पल बिना किसी टेंशन के बिताइए। आखिर खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती, छोटी छोटी खुशियाँ ही हमारी शाम को खूबसूरत बना देती है। तो मुस्कुराते रहिए, बारिश का आनंद लीजिए और अब तैयार हो जाइए बेहतरीन गानों के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ इन शो दिल से, क्योंकि यहाँ हर शाम होती है दिल से खुशियों के साथ। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: Education is the right choice. It doesn't take long for time and destiny to change. That's why choose MGM University's Dr. G.Y. Patekar College of Computer Science and Information Technology. Exciting career-oriented courses like BCA, BSc Computer Science, BSc Animation, Digital Marketing, Artificial Intelligence and Machine Learning, Integrated MSc Data Science, MSc Information Technology, MSc Computer Science, Data Science and PG Diploma in Animation are waiting for you. Admissions are now open for 2026 and 27. Visit mgmu.ac.in or call 9371714254.
1: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।
2: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
3: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी।
4: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
3: पीजी, एमटेक इन AI and ML, MTech Data Science and Information Technology मध्ये PhD करण्याची संधी किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
4: ऍडमिशन्स ओपन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299।

आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। अगर भारत में किसी शहर की बारिश की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है तो वो है मुंबई की बारिश। कहते हैं कि मुंबई की बारिश सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। बारिश की पहली फुहारें, समंदर से आती ठंडी हवाएं, मरीन ड्राइव की लहरें, सड़क किनारे गर्मा गर्म वड़ा पाव और हाथ में चाय, ये सब मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं करा जा सकता। हाँ, कभी कभी तेज़ बारिश की वजह से ट्रैफिक और सफ़र थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद मुंबई वाले जिस हौसले से और मुस्कुराहट के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं वही इस शहर की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपको कभी मौका मिले तो एक बार मुंबई की बारिश का अनुभव ज़रूर कीजिए। किसी खूबसूरत और सुरक्षित जगह पर बैठ कर बारिश को देखिए, ठंडी हवा को महसूस कीजिए और उस पल को बस जी भर कर जी लीजिए। यकीन मानिए ये एहसास लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। तो इस प्यारे से शाम में बारिश हो या ना हो, अपने दिल में खुशियों की फुहारें जरूर बनाए रखिए। अब वक्त है बेहतरीन संगीत का, जुड़े रहिए इन द शो दिल से, क्योंकि हर शाम कुछ नई यादें और शानदार गाने आपका इंतजार करते हैं यहाँ पे ओनली ऑन MJ Mary Pony FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। देखते देखते हमारी आज की हैप्पी इवनिंग वाइब्स अब यहीं पे ख़त्म होने जा रही है। उम्मीद है कि आज की इस खूबसूरत शाम में हमने आपके चेहरे पर मुस्कान लाई होगी और हमारे गानों ने आपका साथ बखूबी निभाया होगा। अगर आपका दिन थोड़ा थका देने वाला था तो उम्मीद है कि संगीत ने आपको कुछ सुकून के पल दिए होंगे, और अगर आपका दिन पहले से ही शानदार था तो हमें खुशी है कि हम आप

0: आपकी खुशियों का हिस्सा बन पाए। याद रखिए, जिंदगी में हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है, इसलिए बीती बातों को पीछे छोड़िए, अच्छी यादों को अपने साथ रखिए और आने वाले कल का स्वागत पूरे उत्साह और पॉजिटिव सोच के साथ कीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और जहाँ भी रहे खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि एक छोटी सी मुस्कान किसी का पूरा दिन खूबसूरत बना सकती है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमारे साथ बिताया। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई शाम, नई बातें, नई ऊर्जा और शानदार गानों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन MGM रेडियो पॉइंट FM। साथ है तो बात है।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 15 नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा व्हिजिट mgmu.ac.in।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
5: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
5: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: For admission, contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in.
6: Admission open. MGM University School of Engineering and Technology. Programs B.Tech 4 years after HSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology. Computer Science and Engineering, Cyber Security. Electronics Engineering, VLSI Design and Technology. Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM campus N6 Sirko, Chhatrapati Sambhajinagar.

आज हम बात करने वाले उन छोटे छोटे चेहरों की जो बिना एक भी लफ्ज बोले हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, दैट्स कॉल्ड इमोजीज। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है और आज है 17 जुलाई, यानी कि वर्ल्ड इमोजी डे। लेकिन आपने एक बात नोटिस किया, अगर आप ना तो व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर इमोजी ऑप्शन आप ओपन करते हैं और वहाँ पर डेट वाली जो इमोजी है ना उस पर भी 17 जुलाई ऐसा लिखा होता है। क्यों? क्योंकि इस दिन से इमोजी इजाद हुआ था इस दुनिया में, इसी वजह से ना तो इस डेट को वर्ल्ड इमोजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इमोजी का आइडिया जापान से आया था, साल 1999 की बात है, जब जापानीज डिजाइनर शिगेटाका कुरिटा, आई थिंक ये प्रोनाउंसिएशन सही किया मैंने, शिगेटाका कुरिटा, इन्होंने पहला इमोजी सेट डिजाइन किया था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये छोटे आइकॉन दुनिया की सबसे कॉमन लैंग्वेज बन जाएंगे। आज चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, या तो फेसबुक हो, ये ऑफिस की चैट हो, या फिर कोई भी अगर चैट करते हो आपके बंदे से बंदी से, इमोजी के बिना ये अधूरी लगती ही है। यू नो व्हाट, इमोजी सिर्फ आइकॉन नहीं रहे, वो एक शॉर्टकट वाली लैंग्वेज बन चुकी है। तो आज वर्ल्ड इमोजी डे पर एक काम जरूर कीजिएगा, किसी अपने को सिर्फ हाय मत भेजिए, उसके साथ एक प्यारा सा इमोजी भी भेजिएगा। और अगर क्रश को इमोजी भेजना है तो वो तो आप मेरे से ज्यादा होशियार हो, आपको पता है कौन सी इमोजी आपको भेजना है। देखो जो भी इमोजी भेजो भेज दीजिए, उसका रिप्लाई आया तो बताना, आई नो नहीं आएगा और भी अपनी बातें होगी कुछ ही देर में, तब तक स्टे ट्यून।

0: का इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 71 78 44.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546. MGM University छत्रपती संभाजी नगर.
4: कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजीच्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
5: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस, सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
6: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26. MGM युनिव्हर्सिटी N6 सिडको. विजिट MGMU.ac.in. Call 9503082910.

सोचिए जरा, अगर इमोजी कभी बनी ही नहीं होती तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैट्स का क्या हाल हो जाता। हेलो, मायसेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमसीएम 90.8 एफएम। ठीक है, बस इतना मैसेज आया। अब सामने वाला सोच रहा है, सच में ठीक है, गुस्सा तो नहीं है ना, या बिजी है यार, इसको क्या हुआ। फिर शुरू होती ओवर थिंकिंग की फैक्ट्री। और अगर किसी ने लिख दिया अच्छा, यानी कि रिश्ता खत्म हो गया क्या, मतलब ऐसे 100 सवाल हमारे दिमाग में होते। बट ठीक है कि आगे एक स्माइली डाल दी तो समझ में आ जाता कि इंसान ठीक है, गुस्से में नहीं है। और ठीक है कि आगे गुस्से वाली इमोजी लगा दी तो समझ में आ जाता है कि इंसान गुस्से में है। तो इतना फर्क पड़ता है इस इमोजी से, और किसी ने लिख दिया अच्छा और आगे ऐसे सस्पेंस वाली इमोजी लगाई तो समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो इतना इमोजी की ताकत होती है, क्योंकि एक छोटी सी इमोजी से एक अच्छा भी फ्रेंडली हो जाता है और एक ठीक है भी गुस्सा हो जाता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, याद रखेगा। तो इमोजी ने सिर्फ चैटिंग को कलरफुल नहीं बनाया, उसने मिसअंडरस्टैंडिंग को भी कम कर दिया है। हाँ, और हाँ, कभी कभी गलत इमोजी सेंड कर दो तो कुछ अलग कॉमेडी हो ही जाती है। इसलिए आज वर्ल्ड इमोजी डे पर याद रखिए, शब्दों का अपना जादू है और इमोजीज उन शब्दों की एक्सप्रेशन है। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान, और भी बहुत सारी बातें होगी अपनी अबाउट इमोजीज। तब तक के लिए बताइएगा कि आपकी फेवरेट इमोजी कौन है। डीएम ऑन इंस्टा आरजे अदनान एंड स्टे ट्यून्ड।

कभी नोटिस किया है कि हर इंसान का एक फेवरेट इमोजी होता है? मैंने आपसे पूछा था, आपने बहुत सारे मैसेज मुझे किए। हेलो आरजे अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM और बहुत सारे मैसेज में सेम इमोजी मुझे दिखाई दी। बहुतों का कहना है कि हंसती हुई इमोजी हमारी फेवरेट है। बाय द वे, जिस तरीके से आप इमोजी में हंसते हो, असल जिंदगी में हंसते हो क्या? वो भी एक सवाल है, पूछेगा जरूर। कोई हर बात पर ना तो स्माइली वाली इमोजी भेजता है, कोई हर मैसेज के एंड में दिल वाली इमोजी भेजता है, तो कोई हाथ जोड़कर बात खत्म कर देता है, और कुछ लोग तो बस थंब दिखाते हैं जैसे कि बहुत बिजी हो, और हाँ थंब दिखाकर लगता है कि भाई डन कर दिया। वैसे एक बात याद रखिए, धीरे धीरे ना तो इमोजी हमारी फीलिंग एक्सप्रेस करती है, लेकिन उन फीलिंग्स की जगह कभी वो ले नहीं सकती। तो बस किसी को स्माइली वाली इमोजी भेजने से बेटर है असलियत में हंसिएगा और अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताइएगा। किसी अपने को बस दिल वाली इमोजी भेजने से अच्छा है असल जिंदगी में उससे प्यार जताइएगा और दो चार बार मिलिएगा, बातें कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। बस इमोजी के जरिए फीलिंग समझ में आती है, महसूस नहीं होती। और कभी उदास होने के बाद कभी अपनों से जाकर मिलिएगा, अपने दोस्तों से जाकर मिलिएगा। सैड इमोजी भेजने से बेटर है, उनसे गुफ्तगू करोगे तो सैड वाली इमोजी स्माइली में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। तो आज वर्ल्ड इमोजी डे पर चैलेंज ये है कि अपने फेवरेट इमोजी भेजिए और उसके साथ एक असली वाला मैसेज या कॉल भी कीजिएगा अपने खास लोगों को। मिलता हूँ कुछ ही देर में आपके साथ ढेर सारी बातें करने, तब तक स्टे ट्यून्ड।

0: अगर आपका भी कोई घर 350 साल पुराना हो जाए तो आप क्या करोगे, उसको रिनोवेट करोगे ना? तो बस यही होने जा रहा है अपने शहर में भी। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है और बीबी का मकबरा हम सभी को पता है। और कई सालों से ना तो इसकी मीनारें वक्त की धूल और मौसम की मार से काली पड़ गई थी, लेकिन अब खुशखबर ये आ रही है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि जो ASI है उनका कहना है कि उन्होंने अब इसका रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया है। और सबसे खास बात, ये कोई सादे पेंट वाला काम नहीं होगा। जिस तरीके से सदियों पहले मकबरा बनाया गया था उसी तरीके से और उसी एक परंपरा को आगे ले जाते हुए चूना, गुड़, डिंग और उड़द की दाल इसको मिक्स करके मरम्मत करने वाले हैं। अब सोचोगे कि यार चूना, गुड़, डिंग इससे क्या होगा? भाई साहब ये सीमेंट वगैरह तो आज के जमाने की बात है, पहले सीमेंट नहीं था तो तब घर ऐसे मकबरे सब इन सब चीजों से बनते थे और आज तक वो बरकरार है। भाई सीमेंट के पुल तो एक पानी में बह जाते, लेकिन इस तरीके से बनाए हुए गेट्स हो, किले हो, ऐसे मकबरे हो आज तक जैसे के वैसे है। और ये इसलिए करने वाले पुराने तरीके से काम क्योंकि मकबरे की जो पहचान है, जो हिस्टोरिकल पहचान है वो बरकरार रहे। आखिर दखन का ताज सिर्फ एक इमारत थोड़ी है, ये हमारी पहचान है, हमारी विरासत है और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल तरीके से एक गिफ्ट है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो जिस तरीके से रिनोवेशन का काम अभी अपने मकबरे का शुरू हो रहा है, उस तरीके से अपने शहर के बहुत सारे गेट्स है जिसकी अपने शहर की पहचान है सिटी ऑफ गेट्स, तो ये गेट्स भी बहुत खराब हो गए हैं, तो इनको भी रिनोवेशन करने का वक्त आ चुका है। तो इसका भी काम ASI ने जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, इतनी एक दरख्वास्त है, ताकि अपने शहर की पहचान सिटी ऑफ गेट्स है और गेट्स खूबसूरत नजर आएगी तो सिटी अपने आप खूबसूरत नजर आएगी ही, समझे? सो स्टे ट्यून।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
5: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट एडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप्स,
5: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus, N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

देखो भाई साहब और बहन जी, दादाजी, दादी जी, जो आपके हाथ में मोबाइल है ना, उसको सेफ तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है, वरना आपका भी लाखों का नुकसान हो सकता है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और अपने छत्रपति संभाजीनगर में ऐसे दो केसेस सामने आए हैं जहाँ पर फ्रॉड हुआ है एक ही तरीके से, दैट्स कॉल्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग। देखो पैसे हमारे पास होते हैं, हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं और फिर सोशल मीडिया के ऊपर कोई एड देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि यार इसके अंदर अगर पैसा हमने इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट हमारा डबल हो सकता है, जहां पर फायर ट्रेडिंग के नाम के ऊपर तकरीबन 22 लाख रुपए से ज्यादा फ्रॉड हो चुका है। तो भाई साहब को ना तो दिसंबर 2025 में एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक मैसेज आता है जहां पर ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उन्हें लगता है कि यार ये बहुत सेफ है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शुरुआत में उन्होंने बस 15,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू की थी। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे सामने वाली कंपनी ने उनका भरोसा जीता और उन्हें लगा कि नहीं यार अब तो हम इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट कंपनी ने क्या किया, कमीशन और सिक्योरिटी के नाम पर एक साल में लाखों रुपए उनसे वसूल किए और कमीशन के नाम पर और पैसा डबल करने के नाम पर तकरीबन 20 लाख रुपए इन भाई साहब ने इन्वेस्ट किए। और उसके बाद क्या, जब प्रॉफिट हो गया और पैसा बाहर निकालने की बारी आई तो कंपनी गायब हो गई और वो फ्रॉड था ये बाद में उन्हें समझ में आया। फिर वो बंदे परेशान होकर पुलिस स्टेशन गए, बाकी की चीजें सब हो गई। बट सवाल वही उठता है कि कोई भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट जरा सोच समझ के कीजिएगा और फायर ट्रेडिंग के नाम पर आजकल जो ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं इससे बच के रहिएगा। सिंपल तरीका है, कम समय में अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको नजर आ रहा हो ना तो समझ जाना कि दया कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि लालच बुरी बला है, याद रखिएगा, वरना एक गलती आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद कर सकती है। तो भी

क्या टेस्ट है यार इस चाइनीज की, क्या बढ़िया मंचूरियन बनाया है। ऐसा चाइनीज खाने के बाद अपने मुंह से निकलता ही था इसलिए कह रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM, आरजे अदनान आपके साथ है। और कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि एक रिपोर्ट में भी आया है कि आजकल जो चाइनीज मार्केट में मिलता है तो उसका टेस्ट थोड़ा फीका होते हुए नजर आ रहा है। और इसके पीछे ना तो एक रीजन है, क्योंकि अब तक जो हम चाइनीज खाते थे उस एक ऐसी चीज होती थी जिससे उसका टेस्ट बढ़ता था और चाइनीज खाने के बाद अपने आप मुंह से निकलता था, वाह क्या टेस्ट है। बट वो टेस्ट की आती थी पाउडर की वजह से, जिसको कहते हैं अजीनोमोटो। अभी अजीनोमोटो क्या होता है, ये एक ऐसा पाउडर होता है जिससे खाने की टेस्ट बढ़ती है। अब कहीं ना कहीं ये पाउडर ना तो हम सभी ने खाया है, अपने घर पर भी हम यूज करते हैं, जिसको हम सभी लोग एक सिंपल नाम से पहचानते हैं, दैट्स कॉल्ड टेस्टिंग पाउडर। अगर आप मार्केट में जाओगे और पूछोगे कि अजीनोमोटो देना, नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उस नाम से उसको ज्यादा पहचान नहीं मिली है, बट टेस्टिंग पाउडर नाम से उसको पहचान मिली है। और जिस तरीके से FDA अभी कार्रवाई कर रही थी, तो हर होटल वालों ने, चाइनीज वालों ने अपने खाने में टेस्टिंग पाउडर मिलाना बंद कर दिया गया है, क्योंकि FDA के गाइडलाइंस के हिसाब से आप टेस्टिंग पाउडर हद से ज्यादा खाने में यूज नहीं कर सकते, उसका भी एक लिमिट है। लेकिन लिमिट में जब डालते तो उसका टेस्ट नहीं आता था, इस वजह से लिमिट के बाहर जाकर बहुत ज्यादा तरीके में टेस्टिंग पाउडर अपने खाने में डालते थे, और इस वजह से खाने का टेस्ट तो बढ़ता था बट सेहत के लिए थोड़ा हानिकारक था। पता नहीं अब तक हमने कितने ऐसे मिलावटी खाने खाए होंगे जिसके बारे में हमें आइडिया ही नहीं है। आई होप कि आगे चल के सब कुछ चीजें बंद हो जाए, जिस तरीके से FDA काम कर रहा है ये ऐसे करता रहे। तो थैंक यू FDA एंड स्टे ट्यून्ड।

आपके बच्चे जिस रिक्शा से स्कूल में जाते हैं वो रिक्शा सेफ है क्या? बड़ा सवाल है। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और बात कुछ ऐसी है कि एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखा है, वो अपने शहर का है, जहाँ पर एक रिक्शे वाला स्कूल के बच्चों को लेकर जा रहा था। तकरीबन उसके रिक्शे में 8 से 10 छोटे बच्चे थे और वो रिक्शा चलाने वाला फुल टाइट था, मतलब दारू पीकर वो रिक्शा चला रहा था। और एक दो लोगों ने उसको टोका, उसका वीडियो शूट किया और बाद में ऐसा बता रहा था कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, कर लो, मैं दारू पिया हुआ हूँ। और उसके रिक्शे में बच्चे बैठे थे, तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन है अपने शहर में। तो सवाल वही है कि जिस रिक्शे से आपके बच्चे स्कूल जाते हैं वो रिक्शा चलाने वाला दारू पीकर तो नहीं चला रहा है? और अभी इस रिक्शे वाले को पकड़ लिया गया है, इसके ऊपर जो कुछ कार्रवाई होगी वो तो होगी कानून के जरिए, लेकिन सवाल वही उठता है कि हम इतने भरोसे से किसी रिक्शे में अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो बच्चों की जान कितने खतरे में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने भी अब इस पर गौर करना चाहिए कि जिस रिक्शे में अगर आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो वो सेफ है या नहीं है, या किसी स्कूल का रिक्शा हो तो इसको स्कूल वालों ने भी जरा इस पर ध्यान देना चाहिए। एंड पुलिस प्रशासन ने भी एकदम एक्टिव मोड पर और कड़क कार्रवाई शुरू करनी चाहिए ऐसे रिक्शा चलाने वाले लोगों पर। बस रिक्शे की नहीं, बात जो भी ड्रिंक और ड्राइव करता है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब पुलिस प्रशासन कह रहा है कि अगर कोई भी रिक्शा वाला दारू पीकर अगर रिक्शा चलाएगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई तो होगी, फाइन वगैरह होगा। और पेरेंट्स को भी थोड़ा गौर देना चाहिए कि आपके बच्चे जिस रिक्शे में जा रहे हैं वो रिक्शा सेफ है या अनसेफ है, क्योंकि रिक्शे वाले तो सुधरने का नाम नहीं लेते। अब इतना तो पता है कि इस पर कार्रवाई होगी रिक्शे वाले पर, कुछ दिन में छूट भी जाएगा, उसके बाद सुधरेगा या नहीं? देखो नहीं सुधरेगा, क्योंकि पहली बार तो नहीं हुआ होगा उसके साथ, ये बहुत टाइम से ऐसा रिक्शा चला रहा होगा। तो जिम्मेदारी हमारी है, हमने भी देखना चाहिए कि अपने बच्चे सेफ है या नहीं। तो थोड़ा सावधान रहिए एंड स्टे ट्यून।

0: इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891-7844.
2: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 7620322186 or 7017085546. MGM University, NCT, Chhatrapati Sambhaji Nagar.
3: Cosmetic Technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech Cosmetic Technology sathi MGM University madhe Basic and Applied Sciences cha antargat aajach apla pravesh nishchit kara.
4: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatach new advanced technology hi shikhnyas milel. Shivay vividha namankit kampanyanmadhe placement chi hami suddha.
5: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 Sidco. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

0: आवाज बनी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुनी, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है